0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Let's face it, the only time एक लड़की एक लड़के को डैडी बुलाना चाहती है is when she's getting naughty, not otherwise. लेकिन मेरे एक्स ने मुझे मजबूर कर दिया था कि on a daily basis ना मुझे उसमें like पिताजी दिखने लगे थे, not necessarily मेरे, it

what? Ladies look really attractive जब वो कम बोलती हैं और जब भी बोलती हैं कुछ consequential बोलती हैं. I was like, really? Is that the case? तो चल, अब जो अगला sentence मेरे मुंह से निकलेगा ना, वो hyper consequential होने वाला है. I am dumping you. And he was like, क्या बात?

0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
2: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
6: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
4: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
6: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
7: XL Entertainment presents Mirzapur the Movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
8: Listener mein back to back gana sunega

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मीडियम फेमस पोएट्स की पोएम चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हो कि आपने खुद लिखा है, ऐसे गलत गलत गंदे गंदे काम करते हो, इसका कन्फेशन कहाँ करने वाले हो? हाँ, गोस्ट शो की सिर्फ यहाँ, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर द सीक्रेट बॉक्स और मैं हूँ आपके साथ मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जो भी है आपकी कन्फेशन, हिट मी अप एंड आई विल कॉल यू लाइक आई कॉल माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो वाइब, आई एम एक्चुअली, मैं काफी सीधी साधी और डिसेंट टू कम्पेयर टू द काइंड ऑफ कन्फेशन जो आप अभी करने वाले हो, क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता चुके हो.
2: Exactly. यही बात सुन लो. क्या करे, करना है कुछ इंटरेस्टिंग काम, लेट्स से लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना. मैंने डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल बना दिया एंड गेस व्हाट, मुझे बॉयफ्रेंड भी मिल गया. या
1: लेकिन ये तो कन्फेशन है नहीं आपकी.
2: एग्जैक्टली, बट हम लोग मिले और मिलने के बाद यू नो वी हैड नाइस डेट एंड ऑल दैट, और उस डेट के एंड में उसका कजन उसको पिकअप करने आया यार. एंड देन आई सॉ हिज कजन और मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस गाय नाउ, मुझे तो वो चाहिए है. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे वो लाइफ में चाहिए. मैंने उसका प्रोफाइल पूरा स्टॉप कर दिया है, उसका नंबर भी मैंने कॉन्टेक्ट से मंगवा लिया है. जस्ट गोना पिंग हिम सून.
1: आई कांट बिलीव दिस. तो आपका दिल आपके करंट बॉयफ्रेंड के कजन पर आ गया है, लेकिन आप एक करंट बॉयफ्रेंड का करने क्या वाले हो? कजन का नंबर तो ले लिया, लेकिन करंट बॉयफ्रेंड को कैसे बाय बाय बोलोगे?
2: देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों पैसा हो नहीं सकता. Thank you so much going for the cousin guy.
1: How saucy are you? वैसे आपको जरूरत नहीं है रोशिफिकेशन की, बट दे दूं वैसे ही, just on a lark.
2: Please, please.
1: ले लो यार.
2: बहुत इंसान हो तो गिर सकेगा.
3: You've been roshified.
1: I hope that you don't have to compromise anywhere. एक क्यों? दोनों boyfriends हो आपके.
2: है ना?
1: It was amazing talking to you, mystery caller. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह ना कि सिर्फ एक confession है, but एक bold, honest, unapologetic confession है, I want to hear all about it. So hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिंग।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
5: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Oh, खाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

अगर आप किसी पर चीट कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव द डीसेंसी ऑफ नॉट गेटिंग कॉट, बिकॉज फिर सारे पीपल इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ चीटिंग एंड अप लुकिंग एक्सट्रीमली स्टूपिड. जैसा रिसेंटली अभी मेरी सोसाइटी में हुआ, वन क्यूट गाय वॉज कॉट चीटिंग ऑन हिज वेरी हॉट गर्लफ्रेंड, और उसके बाद अब इतनी भसड़ है कि अगर सोसाइटी के जिम में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जस्ट दैट. टॉकिंग ऑफ चीटिंग, क्या आपको पता है दैट देयर आर थ्री टॉप ज़ोडियाक साइंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू चीट ऑन यू. नंबर वन पे पाइसीज है. आई नो पाइसीज आर सपोज टू बी सुपर रोमांटिक, बट वो ऑल्सो मूडी होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट के मूड में उनका किसी पे दिल आ गया, टू बैड फॉर यू सिस्टर. नंबर टू पर है जेमिनाइज, बिकॉज दे नीड सो मच अटेंशन ऑल द टाइम. नंबर तीन पर है लिब्रंस. एंड अगर आप जानना चाहते हो इफ योर पार्टनर और उनके जोडियाक साइन पर बेस्ड इफ दे आर चीटिंग ऑन यू आर नॉट, व्हाई डोंट यू सेंड मी अ DM इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हमने ना एक साल पूरा डेट किया, उसके बाद वो अमेरिका चला गया मुझे डंप करने के बाद. अब वो दो हफ्ते के लिए आ रहा है यहाँ पर इन इंडिया बिकॉज उसको कोई काम है, और वो कह रहा है कि हमें डिनर पे चले जाना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मे बी हम पुरानी स्पार्क्स रीकिंडल कर सकते हैं. अब मुझे क्या करना चाहिए?
2: रोशी के डीएम से
1: ये क्वेश्चन मुझसे प्रीति ने पूछा. एंड प्रीति, यू डिड टेल मी कि उसने जब आपको डंप किया था काफ़ी बुरी तरह से डंप किया था. एंड आई एम गेसिंग कि ये जो वापस आ रहे हैं महोदय पर दो हफ्ते के लिए, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए. ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो हुकअप कर सके. और दो हफ्ते में यार कौन डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा, कौन 100 बार राइट स्वाइप करेगा, फिर एक अच्छी सी डेट मिलेगी. आप हो ना रेडी तो एक काम करो, अगर आप इसे सीरियसली मिलना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो काफ़ी लूजर बंदा है, इसे नहीं मिलना चाहिए. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मीट हिम, डिनर पर जाओ और उसके बाद टेक अ कैब एंड कम होम. ओके, इसके साथ ज़्यादा चिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर वो आपसे इतना प्यार करता होता तो एक साल जो अमेरिका में था तब तो उसने आपको टेक्स्ट करने की जहमत नहीं की. अब वो इंडिया आ रहा है और उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, तब उसको आपकी याद आ रही है. ही स्पेल्स द वर्ड लूजर. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई दुविधा है ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. क्योंकि मैं हूं आपकी ब्रोशी, ना मैं मिर्ची रोशी. तो कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं आना. तो सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट

0: छुरा क्यों घोंपे?
1: मत मारिए कालीन भैया,
2: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहते हो, देन अपने लिए एक परफेक्ट ऑडियंस ढूंढो, एक नीश काव करो, अपनी ऑडियंस को केटर करो विद टॉप क्वालिटी कंटेंट एंड एंगेज विद योर फॉलोअर्स. लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज अंकुर बेचारा इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहता है, बट दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज ट्रबल्स. टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद हिम. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में कोई भी buzzer.com है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू डू दैट, मेरे साथ लाइन पर अंकुर है. Hi babe.
2: Hi Roshi, but there's one problem here.
1: What problem?
2: Ankur is a bit E.
1: Okay.
2: So you can just call me Anki because that's also my Instagram account.
1: Hi Anki. Okay, sorry, but that's, I get it. Like you know, जब लोग मुझे रोशी कहते हैं, I kind of like feel like मेरा पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, और जब तक वो मुझे मिर्ची रोशी नहीं कहते, so sorry, I'm just going to call you Anki. What's up,
2: sorry,
1: Anki?
2: I'll call you मिर्ची रोशी then.
1: Thank you very much. I appreciate it. अच्छा ये बताओ कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है. इंस्टाग्राम पे आपने मुझे छोटा सा आइडिया दिया था, एंड देन यू सेड कि बाकी की बात हम जब फोन पे बात करेंगे तब करेंगे. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ.
2: सो आई मीन एज आई सेड, अंकुर इज टू ओल्ड फैशन, इट्स टाइम फॉर एंकी. एंड सिमिलरली मतलब ट्रेडिशनल वे से नाउ एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स मोर डिजिटलाइज्ड वे, सो इंस्टाग्राम इज द वे,
1: राइट.
2: एंड मैं थोड़ा सा हूँ एक्सट्रोवर्ट टाइप का, आई वांट दैट पब्लिक इमेज वाला स्टाइल, एंड आई super active on Instagram with not so many followers, but yeah, I'm increasing.
1: Okay.
2: So in the past I've dated like not many girls but like 4 or 5, and un sabke paas is like tens of thousands, 20,000s of followers and all hote the. Girl I'm dating currently, she has only around 500 to 600 followers. ना वो थोड़ी था ना, मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स के सामने जाता हूँ ना, तो वो बिकम्स की यार इज इट लाइक तूने थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी कर ली, या यू नो इट्स नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड वेयर यू यूज्ड टू डेट पीपल.
1: वेट अ सेकंड, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट आपके दोस्त आपके रिलेशनशिप को जज करते हैं बिकॉज आपकी करंट गर्लफ्रेंड के इंस्टा फॉलोअर्स कम है?
2: या
1: और आपको क्या लगता है इसके बारे में?
2: आई मीन पहले मुझे लगता था कि नहीं, दैट शुडंट बी अ फैक्टर, बट देन अब मुझे लगता है कि दैट इज अ फैक्टर, दैट इज अ मेजर फैक्टर. बिकॉज जब मैं अपने प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स के साथ होता था, एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ होता था, तो वो एक होता था, वो एक सेल्फ इमेज होता था कि ऑलराइट शी हैज सो मेनी फॉलोअर्स एंड इट्स ऑल यू नो बिकमिंग पब्लिक.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिशन।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba!
2: Roshi Baba ki!
3: Calm down, my bhagjano. Today I'm going to tell you a very interesting thing about body language. अगर आप जानना चाहते हो कि जिस पर्सन के साथ आप डेट पर गए हो वो आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑब्जर्व देयर आईज. अगर वो आपकी आंखों में आंखें मिलाकर देख रहे हैं या उनका फेस आपके फेस की तरफ है, पॉइंटेड प्रीटी मच एट योर फेस इन जनरल, देन दैट मीन्स दैट दे आर कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन यू. अगर बार बार उनकी नजर कहीं और जा रही है, इफ दे आर लुकिंग समवेयर एल्स, दैट मीन्स दे आर डिस्ट्रैक्टेड. एंड इट कैन ऑल्सो मीन कि या वो बोर हो गए हैं, या वो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय समथिंग एल्स, या फिर जब वो आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड देर लुकिंग अवे, दे कुड पोटेंशियली बी लाइंग टू यू. इस बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने बाय हार्ट मेमोराइज कर लिया, यू विल नेवर गो रॉन्ग ऑन द फर्स्ट डेट और द 40th डेट. एंड यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस. अगर आपकी जिंदगी में यू वॉन्ट मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RocHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ब्रो अब तो तू नस काट ले, ठीक है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये कहा आफ्टर यू आस्क हर कि हाँ इज एवरीथिंग ओके, एंड शी टर्न्स अराउंड एंड सेज हाँ इट्स ओके, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, इट्स फाइन, और आपने मान लिया कि इट इज़ फाइन और आपने मान लिया कि उसे इसके बारे में बात नहीं करनी है, तो बेटर है कि आप नस काट लो, क्योंकि इट विल बी अ लॉट ईजियर. उसके बाद जो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 दिन, उस तरह का टॉर्चर आप झेल नहीं पाओगे. तो पहले ही नस काट लो एडवांस में. जब आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है इट्स ओके, तो सुनो ढंग से वो क्या कह रही है. इट इज नॉट ओके, तू एक नंबर का गधा है, तुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इतने साल तुझे पीट पीट के समझाने की कोशिश की, दिमाग तेरा कहाँ घास चढ़ने गया था, स्कूल में फेलियर, रिलेशनशिप में फेलियर, नस काट लो आप. Please, I think it's a great idea. Go for it. I am not suggesting that. अपने आप self harm मत करना and don't blame it on me. I'm just kidding. But if you have been through a fight, जहाँ आपने अपने girlfriend की it's okay, I'm fine, को it's okay, I'm fine मान लिया था, I really want to know आप किस तरह के बेवकूफ हो. And to share that story with me, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do, just don't cut your nuts in real time. And kahin mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मीडियम फेमस पोएट्स की पोएम चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हो कि आपने खुद लिखा है, ऐसे गलत गलत गंदे गंदे काम करते हो, इसका कन्फेशन कहाँ करने वाले हो? हाँ, goes to show कि सिर्फ यहाँ, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर द सीक्रेट बॉक्स और मैं हूँ आपके साथ मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जो भी है आपकी कन्फेशन, हिट मी अप एंड आई विल कॉल यू लाइक आई कॉल माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो वाइब,
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम एक्चुअली, मैं काफी सीधी साधी और डिसेंट टू कम्पेयर टू द काइंड ऑफ कन्फेशन जो आप अभी करने वाले हो, क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता चुके हो.
2: एग्जैक्टली, यही बात सुन लो. क्या करे, करना है कुछ इंटरेस्टिंग काम, लेट्स से लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना. मैंने डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल बना दिया एंड गेस व्हाट, मुझे बॉयफ्रेंड भी मिल गया.
1: लेकिन ये तो कन्फेशन है नहीं आपकी.
2: एग्जैक्टली, बट हम लोग मिले और मिलने के बाद यू नो वी हैड नाइस डेट एंड ऑल दैट, और उस डेट के एंड में उसका कजन उसको पिकअप करने आया यार. एंड देन आई सॉ हिज कजन और मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस गाय नाउ, मुझे तो वो चाहिए है. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे वो लाइफ में चाहिए. मैंने उसका प्रोफाइल पूरा स्टॉप कर दिया है, उसका नंबर भी मैंने कॉन्टेक्ट से मंगवा लिया है. जस्ट गोना पिंग हिम सून.
1: आई कांट बिलीव दिस. तो आपका दिल आपके करंट बॉयफ्रेंड के कजन पर आ गया है, लेकिन आप एक करंट बॉयफ्रेंड का करने क्या वाले हो? कजन का नंबर तो ले लिया, लेकिन करंट बॉयफ्रेंड को कैसे बाय बाय बोलोगे?
2: देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों ऐसा हो नहीं सकता. Thank you so much going for the cousin guy.
1: How saucy are you? वैसे आपको जरूरत नहीं है रोशिफिकेशन की, बट दे दूं वैसे ही, just on a lark.
2: Please, please.
1: ले लो यार.
2: इंसान हो तो गिर जाएगा.
3: You've been roshified.
1: I hope that you don't have to compromise anywhere. एक क्यों? दोनों boyfriends हो आपके.
2: है ना?
1: It was amazing talking to you, mystery caller. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह ना कि सिर्फ एक confession है, but एक bold, honest, unapologetic confession है, I want to hear all about it. So hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: मौसम दुरस्त, हवाओं में है सांस नहीं पर कल ही है शब शिकस्त।
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Kabhi Jersey ki street par. कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: हमारा अगला पार्टनर कौन होगा ये हम तब डिसाइड करते हैं जब हम सामने वाले इंसान को किस करते हैं। तो बेसिकली एक किस हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हम इस बंदे के साथ हुकअप करने वाले हैं या डेट करने वाले हैं या नहीं। लेकिन मेरे केस में किसिंग डिसाइड करता है कि अगला वाला फ्रॉग मेरा फ्रॉग होगा कि नहीं, क्योंकि आज तक मुझे प्रिंस चार्मिंग तो मिला नहीं है, मैंने सिर्फ फ्रॉग से काम चलाया। विच यू नो व्हाट आई जेन्युइनली थिंक कि किसिंग ना एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है एक रिलेशनशिप का। मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स थे, अच्छे बुरे व्हाटएवर, एक डिफाइनिंग फीचर जो हर रिलेशनशिप में था वो ये था दैट द किसिंग वॉज ऑन पॉइंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कितने भी इंटीमेट हो या ना हो, अगर आपके रिलेशनशिप में किसिंग नहीं है ना, तो उस रिलेशनशिप में कोई ना कोई फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटेडनेस लगती है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। आई वॉन्ट टू नो कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, किसिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। और ये बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE। और किसिंग हो ना हो, रिलेशनशिप हो ना हो, जिसके पास लव है ना उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोथ।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: दिस इज समथिंग

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कहते हैं कि आपके दिल की खूबसूरती आपकी आवाज में छलक जाती है। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया और रफी साहब की इस खूबसूरत आवाज़ के

उनके हस्बैंड नहीं रहे, और जब उनके हस्बैंड नहीं थे तो उनके पास ना रोज के पैसे के लिए किल्लत होने लगी, उनके पास पैसा ही नहीं था गुजारने के लिए। ये बात जब रफी साहब को पता चली तो रफी साहब ने उनको एक मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। लेकिन उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जब ये काम शुरू किया तो वो एक अनोनिमस मनी ऑर्डर की तरह जाता था, यानी उनका नाम पता कुछ भी नहीं कि कौन ये मनी ऑर्डर भेज रहा है। ये मनी ऑर्डर रुकना तब शुरू हुआ जब रफी साहब नहीं रहे। तो भाई वो जो नेबर थी वो गई और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पता किया कि क्यों नहीं आ रहा है उनके पास वो पैसा। देन शी केम टू नो क्योंकि रफी साहब नहीं रहे और वो ही उन्हें ये पैसा भेजा करते थे। इमेजिन, रोंगटे खड़े हो गए ना, गूज बम्स। पुरानी जीन्स पे हेलो एंड वेलकम, श्रेया आ गई है। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। तो गाने सुन करके वापस आओ, आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज सॉन्ग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज़ ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज़ इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोर दा को लाया गया, और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म तेजाब बाय नितिन मुकेश, पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। एंड इसी गाने के बाद होटल में हड़कंप मच गया था। कोई एक तरफ पुलिस को बुला रहा था और कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि ये गाने की शूटिंग ना लेट इन द नाइट हो रही थी, और जो फिल्म की कास्ट थी, यानी इस गाने की जो कास्ट थी, अनिल कपूर एंड द रेस्ट ऑफ द क्लैन, वो ना बिना अपना मेकअप ऑफ किए, बिना अपना मेकअप रिमूव किए एक होटल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो किसी के कहीं से खून निकल रहा है, किसी की आंख के पास ब्रूसेस आ रखे हैं, किसी के ऊपर पंचेस के निशान हैं, कोई जो है उसका मुंह पूरा कटा हुआ है। ये देख करके ना होटल वाले एकदम सदमे में आ गए थे। कोई पुलिस को फोन कर रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कि तब उनको बताया गया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, हम ना ये गाना सो गया ये जहाँ इसको शूट करके आए हैं, बस अभी मेकअप रिमूव कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने और बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक। और हाँ, अगर मुझसे कोई वन टू वन बात करनी है तो ऑफ कोर्स 24/7 अवेलेबल हूँ, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

24 बार, 24 टाइम्स ये पिक्चर देखी थी, 24 टाइम्स एक कैरेक्टर देखा था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अमर फ्रेम, जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी और राजेश खन्ना इसमें थे। राजेश खन्ना साहब ने ये जो कैरेक्टर था आनंद बाबू, ये 24 बार देखा था। कैसे देखा था? ओके, सो इस फिल्म को बनाया गया था एक बंगाली फिल्म के ऊपर। बंगाली फिल्म का नाम था निशी पद्मा और उसी फिल्म पे ये फिल्म अमर प्रेम बेस्ड थी। अब हुआ ये कि जब काका से कहा गया कि निशी पद्मा का फेमस एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर अनंता बाबू को आपको रेप्लिकेट करना है, तो उन्होंने आनंद बाबू करके इसमें अपना किरदार निभाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस पिक्चर को, निशी पद्मा को, 24 बार देखा, एकदम खोल करके पी गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मुझे लगता है कलाकार चाहे जितना भी बड़ा हो, वो अपना होमवर्क करके जरूर आता है। फिर चाहे वो सेट पे करके आए, चाहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करके आए, चाहे कैमरे के पीछे आए, लेकिन हाँ, जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, उसके पीछे उनका होमवर्क बहुत सॉलिड रहता था। पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ हो, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इसी फिल्म से राम से ब्रदर्स ने शुरुआत की थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म बुड्ढा मिल गया। एंड दिस वॉज द फिल्म जिससे कहानी लिखने की शुरुआत की थी राम से ब्रदर्स ने, श्याम राम से एंड तुलसी राम से। लेकिन जब आप फिल्म के क्रेडिट देखोगे तो उसमें राम से नहीं है, उसमें सिर्फ श्याम और तुलसी लिखा हुआ है। बट राइट

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

ये फिल्म इतने लोगों का डेब्यू थी, इतने लोगों का फर्स्ट थी, एंड सबके लिए इस फिल्म ने कमाल किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट QSQT कयामत से कयामत तक। अच्छा, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया आमिर खान ने एंड जूही चावला ने, आगे क्या हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया उदित नारायण ने, आजकल को छोड़ दो तो बाकी क्या हुआ वी ऑल नो। एंड इसी फिल्म से अलका याग्निक भी आई। उदित नारायण और अलका याग्निक का ये जो डुएट जोड़ी थी ना, ये कितनी पॉपुलर हुई दैट ऑल ऑफ अस नो। इसी फिल्म से भाई आनंद मिलन की जोड़ी ने भी कदम रखा था एज म्यूजिक कंपोजर्स एंड दे डिड वंडर्स। सो ये जो फिल्म थी QSQT सबके लिए लकी चार्म थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के गाने बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: फिर पता है क्या हुआ, सबसे ज्यादा हार काका की फोटो पे चढ़े। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नमक हराम। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही थी कुछ गानों के पहले, और मैंने कहा था कि वापस आओगे तो पूरी कहानी बताऊंगी। अब होता यह है कि नमक हराम जो ऋषिकेश मुखर्जी बना रहे थे, इसमें दोनों स्टार्स एक साथ दूसरी और आखिरी बार आए, यानी राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन। Now what happened was कि काका उस समय सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन बस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऑलरेडी काफी सारी फ्लॉप पिक्चर्स हो चुकी थी, बीच में काका की भी कई सारी फ्लॉप पिक्चर्स आ चुकी थी। अब काका ना अपने ऑन स्क्रीन मरने से काफी ऑब्सेस थे। उनको लगता था फिल्म्स लाइक आराधना, फिल्म्स लाइक यू नो सफर एंड ऑफकोर्स आनंद इसलिए वर्क्ड बिकॉज उनका कैरेक्टर डाइड ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से उन्हें ऑडियंस से काफी सिंपथी मिली और मूवी हिट हो गई। तो काका चाहते थे, राजेश खन्ना चाहते थे कि इस फिल्म में भी, नमक हराम में भी, उनका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन मर जाए। अब भाई ऋषिकेश दा ने कहा कि इस बार उनका कैरेक्टर नहीं बल्कि बच्चन साहब का विकी जो है ना वो मरेगा ऑन स्क्रीन। काका ये बात कैसे हजम कर लेते, उन्होंने 2 घंटे की मीटिंग करी और ऋषिकेश दा को बस ये कहा कि नहीं काका, मुझे मेरी एक अच्छी हिट फिल्म चाहिए क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी फ्लॉप पिक्चर्स दी हैं, मेरे कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरना चाहिए, मेरे कैरेक्टर को। तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा चलो भाई एक काम करते हैं, कल तुम और अमिताभ, अमित कहते थे वो बच्चन साहब को, कल तुम और अमित दोनों 8 बजे सुबह सेट पे आ जाना अपनी अपनी एक फोटो लेकर के, दोनों लोग फोटो लगा देना और सेट पे जितने लोग, पहले उन्होंने ना एक्चुअली ये आइडिया नहीं दिया, जब ये दोनों अपनी अपनी फोटो लेकर के सुबह 8 बजे आ गए तो ऋषिकेश दा ने सडनली अनाउंस किया कि सेट पे जितने भी लोग हैं वो किसी एक फोटो पे हार चढ़ाएंगे, और हार चढ़ाने का मतलब ये होगा कि ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर इस फिल्म में मरेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा हार ऑफकोर्स राजेश खन्ना की फोटो पे चढ़े। एंड देन जब आप ये पिक्चर देखोगे ना आपको लगेगा है राजेश खन्ना का कैरेक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है मरने से, फिर भी ऑन स्क्रीन ही डाइज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।
1: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
5: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबाए आहा अरे

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो गाना आ रहा है ना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। पहले गाना सुनो, ये वाला गाना है ना, रोज रोज आंखों तले,
1: रोज रोज आंखों।
0: ये गाना है फ्रॉम द फिल्म जीवा, और इस फिल्म में थे संजय दत्त और मंदाकिनी जी, ठीक है। इस गाने को गाने वाली हैं आशा ताई और अमित कुमार। अब हुआ ये कि इस गाने का सिर्फ फीमेल वर्जन होना था, और वो ऑफ कोर्स मंदाकिनी जी पे पिक्चराइज था, लेकिन गाने में साथ में संजय दत्त भी थे। तो ये गाना जब शूट होने लगा, संजय दत्त को लगा कि इतना खूबसूरत गाना है और मैं इस गाने में कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मंदाकिनी के अगल बगल घूम रहा हूँ। तो वो गए पंचम दा के पास, आर टी परमन के पास, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया, और उन्होंने कहा कि भाई इस गाने में मुझे भी कुछ लाइंस दे दो, मैं भी कुछ गुनगुना लूं। तो फिर आर डी बर्मन ने कहा कि ठीक है, किशोर को बुलाते हैं और किशोर कुमार से इस गाने की कुछ लाइंस गवाते हैं। जब वो प्रोड्यूसर के पास गए तो प्रोड्यूसर ने कहा, ना ना ना भाई, हमारे पास फिल्म का बजट इतना नहीं है कि हम किशोर कुमार को ला करके इस गाने की कुछ लाइन्स गवाएं। सो ही रिफ्यूज्ड। फिर भाई पंचम दा आर डी बर्मन साहब लेकर के आए अमित कुमार को। ये जो गाना है वो आशा ताई और अमित कुमार ने एक साथ गाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, रोज रोज आंखों तले, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पहली फिल्म और बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड लेकर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और अगला जो गाना है इस फ्रॉम द फिल्म जूली। इस फिल्म के गानों के साथ आज म्यूजिक कंपोजर पहली बार कदम रख रहे थे राजेश रोशन। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ कि कोई म्यूजिक कंपोजर पहली बार यानी पहली ही फिल्म के गाने कंपोज करने के लिए अवार्ड ले गए इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। एंड दैट वाज राजेश रोशन फॉर जूली। अब उन्होंने अवार्ड कब जीता? 25 साल के बाद फिर से, व्हेन ही मेड द म्यूजिक ऑफ कहो ना प्यार है। सो आई फील कि मतलब ये ईयर्स, ये साल म्यूजिक के लिए ना कुछ नहीं होते। अगर आप म्यूजिक कंपोज कर लेते हो, अगर आपको स्वर का ज्ञान है, अगर आपको धुनों से प्यार है बेसिकली, तो फिर चाहे वो 25 साल पहले हो।

या 25 साल बाद हो, ऑडियंसेस को पसंद आएगा। वेल, राजेश रोशन का कंपोज्ड ये गाना फ्रॉम द फिल्म जूली कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नासिर हुसैन जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने कभी भी बच्चन साहब के साथ फिल्म नहीं बनाई, लेकिन वो तहे दिल से चाहते थे कि बच्चन साहब उनकी एक फिल्म में काम करें। इस फिल्म यादव की बारात में इट वाज ऑलमोस्ट तय कि बच्चन साहब होंगे लीड रोल में, लेकिन फिर बीच में आ गए कौन, बताती हूँ। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो बीच में आ गए हमेशा की तरह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड क्योंकि बच्चन साहब जंजीर से पहले एक फ्लॉप एक्टर माने जाते थे, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती थी, तो उन्होंने ना ये कह के साफ मना कर दिया कि वो इस फिल्म यादों की बारात में पैसे ही नहीं लगाएंगे अगर नासिर हुसैन साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लिया। इसीलिए उनको बच्चन साहब को ड्रॉप करना पड़ा और विजय अरोड़ा को लेना पड़ा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। Come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी ये पड़ोसन, जिसका गाना भी आपको सुनाया श्रेया ने, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अच्छा सुनो ना, ये जो फिल्म थी ना, ये महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी, तो उनका सारा पैसा लग रहा था। गुरु साहब को उन्होंने लिया था एक रोल में। गुरु साहब अपने टाइम के नामी गिरामी हीरो थे, बट ही पास्ड अवे। सो फिर यही रोल लेकर के वो सुनील दत्त साहब के पास गए। ही वॉज नॉट श्योर कि सुनील दत्त ये रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सुनील दत्त उस समय ना काफ़ी सीरियस रोल्स कर रहे थे, और पड़ोसन फिल्म का ये रोल काफ़ी कॉमेडी वाला रोल भी था। बट जब सुनील दत्त साहब ने ये रोल सुना, उन्हें इतनी पसंद आई स्क्रिप्ट, अपना कैरेक्टर, के उन्होंने फौरन हामी भर दी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया मैंने। अब लता जी का एक गाना रहे, सुन करके वापस आ गए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रन जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, सो लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, तो आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कोई ऐसा जो हवा के साथ साथ घटा के संग संग आपका हाथ पकड़ के चलता रहे बस। मेरी नजर में तो आप ही हो मेरे लिए, तभी तो रोज रात में जाने से पहले हाईवे पे लेके जाती हूँ आपको। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, इफ यू मिस मी, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, फेसबुक और इंस्टा माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची
0: खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। रेडियो मिर्ची, इट्स ऑन
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: हॉट है। ये था गुची संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली कंपोज्ड बाय प्रतिंदर लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग फुल ऑन मिर्ची बैंगर इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

से ना हो पाएगा। कौन बोला

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है।

शुरू यह शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधिके

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने गोल की जर्नी में सेटबैक्स के बावजूद गिव अप ना करके कंसिस्टेंटली आगे कैसे बढ़ें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने मुझे हरिवंश राय बच्चन की बहुत कमाल की लाइन याद दिला दी, और शायद इसे अग्निपथ फिल्म में यूज भी किया गया था। वो कहते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, थकिए मत, मुड़िए मत। अपने अगर आपने एक रास्ता तय कर लिया, आप जब वो अग्नि के पथ से गुजरेंगे तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी।
4: सी, मंजिल तक का एक लंबा रास्ता होता है। कभी कभी वो रास्ता लोग बहुत स्ट्रेस से क्रॉस करते हैं, थकावट से, परेशानी से, मंजिल पर पहुंच करके खुश हो जाते हैं, पर मंजिल पर पहुंचने में तो टाइम भी लगता है, और कितना समय उस मंजिल पर रहेंगे, फिर एक नया रास्ता शुरू हो जाएगा। जरूरी है रास्ते को एंजॉय करना, विच मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस। और कुछ भी नहीं करना, अपने को बस सुबह उठ करके बोलना है, जो भी मेरा रोल है, मुझे रोल से खुशी नहीं लेनी, मुझे खुशी से करना है।
3: अरे वाह, क्या बात।
4: इतना ही तो शिफ्ट लेकर आना है ना, अपने से बात करनी है, चाहे मुझे खाना बनाना है, खुशी से बनाना है। कैसे भी बनाया, मजबूरी से बनाया, फिर उन्होंने खाया, फिर किसी ने अप्रिशिएट किया तो खुशी मिली, नहीं, वो मंजिल से खुशी है।
3: मुझे खुश रहते वक्त हर काम करने हैं।
4: एंड खुशी इज नॉट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेजर और एनीथिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन स्टेबल है, आपका मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, आप जो कर रहे हैं अपने 100% खुशी से कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप रोल कुछ भी प्ले कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया कि मेरी बहन कैंसर से रिकवर हो चुकी है लेकिन रिलैप्स का डर हमेशा बना रहता है, इस डर से कैसे निकले? आरती ने रायपुर से लिखा है।
3: डर, मैं कई बार कहती हूँ, कमजोर मन की रचना है। अब वो रिलैप्स होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर तो किसी के भी हाथ में नहीं है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन चांसेस हैं कि अगर जिनको हुआ है वो डर क्रिएट कर रहे हैं तो रिलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं। आपका जो इमोशन है वो आपके हर सेल में अब्सॉर्ब होता चला जाता है।
2: बिल्कुल।
3: कितने रिसर्च अभी बताती हैं कि ये कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये बहुत पहले मना अंदर कोई इमोशन है, सप्रेस्ड है, बॉडी धीरे धीरे उससे अफेक्ट हो रही है, फिर जाकर के वो निकलती है बाहर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकली अगर आप हील हो गए हैं, लेकिन इमोशनली अगर फियर है, हेट्रेड है, रिवेंज है, एंगर है,
2: तो बॉडी पे भी आएगा,
3: ये बीमारी वापस आएंगी ही आएंगी ही। डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं कि 2-4 साल के बाद ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ब्लॉक था उन्होंने आपकी बॉडी से निकाला है,
2: माइंड से नहीं निकाला।
3: वो ब्लॉक माइंड से नहीं निकाला है, वो माइंड से पहले सटल बॉडी में आता है, फिर सटल बॉडी से फिजिकल बॉडी में आता है। आजकल ऑरा टेस्ट होते हैं, आप ऑरा टेस्ट में पहले ही देख लेते हैं कि वो सटल बॉडी में कहाँ है, और आपको पता चल जाता है कि इतने समय के बाद ये फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होना ही है। तो इसलिए फियर कमजोर मन की रचना है। तो कमजोर मन क्या कह रहा है? ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। पहले तो अपने मन को कहना है कि होगा ही नहीं दोबारा। मेरा जो इस बीमारी के साथ कार्मिक अकाउंट था सेटल हो गया, ये दोबारा होगा ही नहीं। फिर सेकंड कहीं कहेंगे, पर हो भी तो सकता है ना। अच्छा, अगर हो सकता है तो उसकी एक प्रेपरेशन, फियर तब होता है अगर आपने प्रेपरेशन नहीं करी। एग्जाम का फियर बच्चे को कब होता है? जब आपने उस चीज की तैयारी नहीं करी।
2: बहुत अच्छी बात कही, प्रिपेयर करो।
3: तैयारी अगर आपने कर लिया तो आपको डर नहीं होता। तो तैयारी क्या है, मन की तैयारी क्या है? 1% अगर ऐसा हुआ, सामना करेंगे। वी विल फेस इट।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने डर को समझ लेना ही उससे ओवरकम करने की पहली सीढ़ी होती है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: साइंटिस्ट मारी क्यूरी जो नोबेल विनिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फेयर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड, जो आपने भी बात कही, एंड नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड इफ वी अंडरस्टैंड मोर वी विल डेफिनेटली फियरलेस।
4: सी अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो इसलिए हर चीज का जवाब देना, फियर किस चीज का? डेथ का। हैव यू एवर सीन अ होम जहां पर कोई मृत्यु ना हुई हो?
3: चांस ही नहीं है।
4: किस चीज का फियर है? मिस्टेक का। हैव यू एवर मेट एनीबॉडी जिसे भूल ना हुई हो? किस चीज का फियर है? जजमेंट का। पीपल विल जज नो मैटर व्हाट। तो जब वो होना ही है तो किस चीज का फियर है? आप अपने को प्रिपेयर कर ले कि अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, जज करेगा, ठीक है, इट इज देयर पर्सनालिटी, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। आपको डेथ का फियर है, आप अपने को बता ले, इट इज इनएविटेबल। आपको बीमारी का फियर है, अपने को समझाए, फिजिकल बॉडी में है, पेन कंपल्सरी है, सफरिंग ऑप्शनल है, विल टेक द बेस्ट ट्रीटमेंट, वी हैव द बेस्ट मेडिकल, इतनी एडवांस हो गई है, जो भी करना होगा करेंगे। आप मन को तैयार करें, एक बार आपने मन को तैयार कर दिया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू फेस इट, फियर चला जाता है। एक्चुअली फियर जाएगा तो हैप्पीनेस आएंगे। फियर को फेथ से चेंज करते
3: हैं। वाह, क्या बात है।
4: फेथ इन लाइफ, फेथ इन एवरी सीन ऑफ लाइफ, फेथ इन गॉड। फियर को फेथ से चेंज कर दे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, रवि का सवाल आया है कि जब लोग मजबूरी का फायदा उठाकर जरूरत की चीजें महंगी बेचते हैं तो क्या ये मॉरली गलत नहीं है, और ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए?
3: मॉरली तो गलत ही है। किसी को भी एक्सप्लॉइट करना, किसी का भी एडवांटेज उठाना, और खास ऐसे समय पर एक्सप्लॉइट करना जिस समय वो बहुत दर्द में है,
2: सही बात,
3: ये बहुत गलत है। ये बहुत बहुत डीप कर्मा है, स्पेशली अगर सामने वाला दर्द में है। जैसे ऑलरेडी फैमिन है और आप फूड प्राइसेस बढ़ा दें, ऑलरेडी वाटर के शॉर्टेज है और आप उस समय पानी के रेट बढ़ा दें, ऑलरेडी आपके सामने कोई बीमार आया हुआ है और आप
2: मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ा दें,
3: या जान करके कोई गलत टेस्ट लिख दें, मना दर्द वाले को एक्सप्लॉइट करना, ये डीप कर्मा है।
2: बट ये आजकल सब जगह होता है। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो यू नो रिजॉर्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, फ्लाइट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो द होल इकोनॉमी इज द वे इट इज कि जब जरूरत आपको बढ़ रही है, आपकी उनको पता है डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऑटोमेटिकली सेम चीज की प्राइस बढ़ा देते हैं।
3: सी, कई जगह पर वो इकोनॉमी और वो किस प्रकार से उनका सिस्टम चलता है, आई एम नॉट अवेयर। मॉरली कोई चीज गलत होना और मार्केट की स्ट्रेटेजी होना वो अलग चीज है। इसलिए कभी जब मॉरली वो चीज गलत करते हैं तो गवर्नमेंट भी कैप कर देती है प्राइसेस को। पीछे भी आई डोंट रिमेम्बर कुछ हुआ था जब
2: प्राइसेस में आई थिंक गवर्नमेंट ने कैप कर दिया था।
3: फ्लाइट के प्राइसेस में भी जिस समय वॉर हुआ था,
2: बिल्कुल
3: उस समय पर जब फ्लाइट प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। सो व्हेन इट इज एथिकली मॉरली रॉन्ग, तो फिर जो पावर पर है, जो पोजीशन पर है, जिनके पास वो पावर है, उनको उस चीज को यूज करना चाहिए। हर एक का एक अपना रोल है, वो कैप करते हैं या जो भी वो जिस तरह से मदद करते हैं वो उनका रोल है। सिस्टम में अगर हमारे पास वो पावर नहीं है तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हर एक को ये याद रखना पड़ेगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा।
2: तो ये पूछ रहे हैं कि उनको कैसे, क्या बताएं, हम क्या बोलें?
3: नहीं, जो कर रहे हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, वो तो करने वाले को हम रियलाइज करा सकते हैं कि देखो ये जो डीप कर्मा है इसका कॉन्सिक्वेंस लौट करके आना ही है। बाकी उस समय पर तो आई थिंक जो एक्सप्लॉइट हो रहा होता है वो अपनी बात रख ही सकता है, बाकी तो क्या ही कर सकता है। तो सिस्टम ही अभी सारा ऐसा हो गया है। अपनी बात को हम असर्टिवली जरूर कहें, सिस्टम की मदद लें, पोजीशन पावर पर कोई है तो उसकी मदद लें, नहीं तो फेथ रखें कि उसके कर्म से उसका भाग्य है। कोई भी अगर नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है। हर चीज का लॉ जो है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बहुत ज्यादा उस चीज को सोच कर आपने डिस्टर्ब हो।
2: ये बहुत अच्छी बात की, फेथ रखना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि डोंट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज लाइक एन ओशन, यू नो अ फ्यू ड्रॉप्स इन द ओशन माइट बी डर्टी, डजंट मेक द एंटायर ओशन डर्टी। और ये बहुत जरूरी है कि हम उस समय उनको बात बताएं, कोशिश करें, लेकिन फेथ सिस्टम में या लोगों में नहीं लूज करें।
3: एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम उस देखो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। आज अगर कोई चीज हमारे साथ ऐसा हमें लगता है कि इनजस्टिस है, फॉर मी आई ऑलवेज टेक दिस एज अ लेसन कि ये मुझे नहीं करना,
2: मुझे तो नहीं करना।
3: देखो मेजोरिटी भी अगर कोई चीज कर रही है तो वो राइट है, ऐसा नहीं,
2: जरूरी नहीं है।
3: नहीं नहीं, अभी सिस्टम ऐसा होता है सब कर रहे हैं
2: इसलिए लगता कि सही है,
3: तो सही है, ऐसा नहीं होता। सब कर रहे हैं तो वो चीज राइट नहीं है। अगर आपको पता है कि वो चीज राइट नहीं है, आप इतनी ताकत रखो दैट यू नेवर बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम।
2: सही बात।
3: इफ यू आर ऑल्सो नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, देन ऑल्सो यू आर प्रोटेक्टिंग द सिस्टम ना।
2: वेरी नाइस।
3: आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से केवल अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं तो भी आप सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर किरण दीप का सवाल आया है कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है, आज भी सबकी जिम्मेदारी निभाती हूँ, लेकिन खुद को कभी प्यार या अपनापन नहीं मिला है। इसी वजह से हमेशा अंदर से परेशान रहता हूँ, क्यों और क्या करूँ?
3: हमने अगर जीवन भर दूसरों को दिया है तो हम कितने भरे हुए होने चाहिए एक्चुअली में। लेकिन हमने बाहर से दिया है,
2: अंदर से,
3: और देने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया है। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो हम अंदर से हर्ट हो गए कि मैंने सबके लिए किया है तो उनको भी मेरे लिए करना चाहिए। इसलिए पहला रिश्ता जोड़ना चाहिए अपने साथ। वो रिश्ता हम लोग नहीं जोड़ते जिसको हम सेल्फ लव कहें, सेल्फ वर्थ कहें, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें। वी आर ऑलवेज वांटिंग फ्रॉम पीपल
2: कि मुझे भी मिले, मैंने
3: जो किया। हम बहुत लोगों के लिए करते हैं ना, और फिर वो हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करते या वो ठीक से बात नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते तो बहुत हर्ट हो जाते हैं
2: कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा,
3: कुछ भी नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट हाउ पीपल बिहेव विद यू, बट इट इज हाउ यू बिहेव विद योरसेल्फ।
2: बड़ा मुश्किल है सिस्टर, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है।
3: नहीं, क्यों मुश्किल है? एक्सपेक्टेशन तब होती है जब वो रिश्ता अपने साथ जोड़ा नहीं है। खाली होंगे तो एक्सपेक्टेशन होंगे ना। देखो, अगर आप जैसे शरीर है, शरीर को खाना चाहिए, अगर आपने अपना खाना खा लिया तो आपकी आंख दूसरे की प्लेट में नहीं जाती है।
2: सही बात।
3: लेकिन अगर आप खाली हैं तो आप दूसरे को भी देखेंगे वो क्या खा रहे हैं, फिर आप मांगेंगे भी, फिर आप छीनेंगे भी, फिर आप चोरी भी करेंगे। क्यों? आपने अपना खाना नहीं खाया, अपना बनाया नहीं और अपना खाया नहीं।
2: तो अपना खाना खाओ, खुद का ख्याल रखो, तो बाहर से अपेक्षाएं नहीं होंगी।
3: बाहर से अपेक्षाएं मतलब यू आर ऑलवेज ओपनिंग द डोर फॉर बीइंग हर्ट ना। आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पता नहीं उनके पास है नहीं है, वो देंगे नहीं देंगे। तो हमारी एक लंबी लिस्ट होती है कि दूसरे को काइंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। कम से कम जिनके लिए मैंने इतना किया है उनको तो करना चाहिए, पर आपने उसको जीरो कर दिया। इसलिए कहते कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, करा मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। सो द फर्स्ट रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड द सेकंड रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी, जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, जो दाता है, जो सबको देने वाला है, जो सबका बोझ उठाने वाला है, वो आपका भी उठा लेगा ना। तो इनवर्ड और अपवर्ड जाने के बाद आउटवर्ड जाना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालिन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
2: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
13: सबसे पहले खुद के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
14: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
15: गुलजार साहब की कमाल की पोइट्री लिखते हैं, मैं इनकी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो कहते हैं कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। तो उसी बात से आपकी बात मुझे आ गई कि पहले खुद के साथ रिश्ता जोड़ो। अगर आईना देख के अगर आपको पहचान में आया था कि यार हाँ हमको भी इस घर में जानता है कोई, तो आयशत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
16: खुद के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है, वो कई बार हम समझते नहीं, हम कहते खुद के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है खुद को एक्सप्लेन करना। जैसे देखो आज किसी का मूड खराब होता है तो हम उसको ठीक करते हैं ना, हम उसको क्या कहते हैं, छोड़ो ना, जाने दो ना, लेट गो करो ना, आगे बढ़ो ना। ऐसे खुद को हील करना। हर्ट भी तो हमने अपने को किया, कोई भी बात हमने कहा अरे देखो उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, उन्होंने मुझे उतना अटेंशन नहीं दिया। अब खुद से हम कह सकते हैं हो सकता है वो बिजी है,
15: सही बात,
16: हो सकता है दे गोइंग थ्रू सम बैटल और उनका ध्यान ही नहीं गया हो,
15: क्या बात, वेरी नाइस।
16: हो सकता है कि ये उनकी पर्सनालिटी है, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो देने वाला हूँ, आई विल गो नेक्स्ट टाइम एंड ग्रीट देम। हर एक को अपने को खुद भरना है और रिश्तों में सिर्फ देना है।
15: वेरी नाइस।
16: वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और जब हम रिश्तों में आते हैं लेना नहीं है, ये अंदर सब पक्का करें। हर रोज हमें सुबह एक लाइन अपने को कहनी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम लेने वाले नहीं, दाता के बच्चे
15: देने वाले।
16: एंड व्हाट यू गिव यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव। आप जो देंगे वो सबसे पहले
15: आप ही को मिलेगा,
16: चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो प्यार है वो गुस्सा है। इसलिए गिव लव टेक लव, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस,
15: गिव टेंशन टेक टेंशन,
16: एब्सोल्युटली।
12: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। 732-339-3155।

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सारा का एक सवाल आया है कि जब किसी को ये महसूस होने लगे कि वो अपने आसपास के लोगों पर बोझ बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए।
3: बोझ कई प्रकार के होते हैं। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं
2: जी, बिल्कुल।
3: फिजिकली डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल। इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बोझ की बात कर रहे हैं। कई बोझ से हम निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो आप अपना कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आप ना उन पर डिपेंडेंट हो। लेकिन एक जगह है जहाँ हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो है इमोशनल।
2: हाँ, बहुत अच्छी।
3: फिजिकली डिपेंडेंट भी हम वैसे नहीं चाहते, पर कभी कभी सर्कमस्टांस ऐसी बन जाती है। हम बीमार हैं, हमें उस समय किसी का सहयोग लेना पड़ता है। हम बुजुर्ग हैं तो भी हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए हम किसी के ऊपर बोझ हैं। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी मैं नहीं समझती होनी चाहिए। इमोशन हम क्रिएट करते हैं। कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करता है, उसके बाद भी अंदर किस प्रकार से फील करना है वो मेरी चॉइस है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। बोझ हमेशा सोच का होता है। बोझ कभी भी जिम्मेवारियों का नहीं होता है, बोझ सोच का होता है। तो बोझ हो सकता है कि आपकी अपनी सोच ही वो बोझ क्रिएट कर रही है, शायद किसी को भी नहीं।
2: हाँ,
3: बहुत कारणों में कई बार ना ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं होती है। कई बार बुजुर्ग माता पिता को लगता है बच्चों पर बोझ है, वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो बोझ लगता ही नहीं है। तो हमारी सोच में ऐसा होता है और इसलिए हमें फील होता है कि शायद हम बोझ हैं। तो बोझ सोच का होता है, तो सोच को परिवर्तन करें।
2: बेसिकली आप कह रही हैं कि आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ बर्डन, बट इट इज द करेजियस एक्ट ऑफ लेटिंग पीपल लव यू।
3: सी, एज लॉन्ग एज Asking for help is not wrong, but वो help के पीछे intent होनी चाहिए अपने को empower करके independent बनाने।
2: बिल्कुल।
3: कभी कभी आप help मांग रहे होते हैं, पर वो help आप अपने को independent बनाने के लिए नहीं, और ही आप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर dependent होते चले जाते हैं।
2: वो नहीं है।
3: बाकी हम सबको कभी ना कभी थोड़ी help लगती है, it is okay.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
12: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे। मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
13: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है?
3: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
2: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
3: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
2: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
3: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
2: उस समय वो ना करे।
3: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
2: बिल्कुल।
3: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
2: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
3: जी,
2: बहुत बढ़िया।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. My name is Priscilla. Welcome to Mirchi Mornings. And we have officially entered the magical place जहां पर हमारी mornings और ज्यादा मिर्चीदार बन जाती है, coffee थोड़ी ज्यादा aromatic हो जाती है, चाय थोड़ी ज्यादा कड़क हो जाती है और breakfast जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा yummyzing हो जाता है। अभी फिलहाल आई यू वेकिंग अप इन योर अपार्टमेंट, सबवे पकड़ रहे हो या फिर ऑफिस की पार्किंग में बैठे हुए सोच रहे हो यार बस दो मिनट बाद एंटर करने वाला हूँ ऑफिस में। आज का प्लान काफी सिंपल है, थोड़ा सा बॉलीवुड सुनेंगे, थोड़ी सी बकबक करेंगे, ढेर सारा म्यूजिक होने वाला है जो एकदम बैंगर होने वाला है, कुछ फन एंड कुछ देसी फील्स, सब कुछ एक साथ एक ही पैकेट में जिसे कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। ये शुरू हो चुका है तुम्हारा दिन मिर्चीदार बनाने का तरीका, लेकिन सिर्फ सुनो मत, जाकर मुझसे बात भी करो। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244 एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे ढूंढना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
9: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
8: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islip.
14: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
15: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
16: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब टाइम है कि हम रिवाइंड करें. 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था और ब्रिटेन ने ऑफिशियली अमेरिकन इंडिपेंडेंस रेकग्नाइज की थी. 1935 में सर मैल्कम कैम्पबेल बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ड्राइव अ कार ओवर 300 माइल्स पर आवर एट द यूटा बॉनविल सॉल्ट फ्लैट्स. भाई हम हाईवे पर 65 पर जाते और फिर भी जीपीएस कॉप एंड कॉन्शियंस तीनों से डर लगता है. 1967 में स्वीडन स्विच फ्रॉम ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट टू द राइट. इस मैसिव ऑपरेशन को कहा गया डागन हे. इमेजिन चेंजिंग द साइड ऑफ द रोड. पूरा देश कलेक्टिवली कंफ्यूज हुआ था. 1971 में कतर गेन्ड फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. एंड फाइनली 1995 में ईबे वाज फाउंडेड बाय पियर ओमिडियार. और फिर दुनिया में एक नया सेंटेंस बॉर्न हुआ. आई डिडंट बाय इट, आई वॉन्ट इट इन ऑक्शन. एंड दैट्स योर ऑन दिस डे व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री विद मी प्रिसिला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
6: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
4: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
6: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
7: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
17: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
20: Radio Mirchi, it's hot.
21: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
22: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mirchi Mornings. And अगर तुम plan कर रहे हो घर खरीदने का, refinance करने का, तो ये अगला update तुम्हारे लिए.
2: Good morning, Radio Mirchi listeners. This is Jason Doshi from SD Capital Funding with today's SDCF Mortgage Market Update. We're starting September with a little bit of pressure on mortgage rates. Yesterday, we saw another sell-off in the bond market with the 10-year yield climbing toward 4.8%. The highest level since November 2023. What's driving it? Well, folks, investors are watching inflation, oil prices, and the amount of government debt hitting the market, and unfortunately, that's translating into higher mortgage rates. But there's some important economic data coming out the rest of this week, which could help us. Today, we get jobless claims and the ISM report. But tomorrow is the big one, the August jobs report. If unemployment is slowing and showing more weakness, that could give the Fed more room to cut rates later this month, which is good news for us and mortgage rates. So if you're in the market for a mortgage, keep an eye on tomorrow's jobs report. Whether you're a first-time homebuyer or refinancing, call us at 732-429-4050 and ask about our promotional introductory rates, which are up to 1% below the current market rate. Again, give me a call directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. This is Jason Doshi with your SDCF Mortgage Market Update. Welcome home.
1: And there you have it, सुबह सुबह का मॉर्गेज का ज्ञान. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस मॉर्गेज अपडेट इज ब्रॉट यू बाय SD कैपिटल फंडिंग.
3: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
4: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क.
3: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट. इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक.
5: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें. व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची.
0: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
13: किसका है ये तू?
14: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं.
15: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर.
16: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी.
15: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com.
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
18: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
17: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Priscilla here on Mirchi Mornings. और अगर तुम वेदर के बारे में वंडर कर रहे हो तो वंडर करने की जरूरत नहीं है because I've got your weather update right here with me. We're sitting at 70 degrees Fahrenheit and it's हल्का हल्का सा बरसात होना शुरू हो चुका है. So अगर तुम commute करने का plan कर रहे हो, umbrella is not optional today. It's compulsory today, my friend. लेकिन good news ये है कि afternoon में skies जो है वो brighten up होने वाला है. Around 2 बजे के आसपास काफी sunny conditions होने वाली है. Temperature starts around 69 degrees Fahrenheit today. Climbs all the way to 87 degrees Fahrenheit and it may feel like 89 degrees Fahrenheit. यानी कि थोड़ा सा वार्मर फील होगा आज पूरा जो तापमान है उसके कंपैरिजन में. और ये इंपॉर्टेंट है कि कल का जो हाई है वो सिर्फ 71 degrees Fahrenheit था लेकिन आज 87 degrees Fahrenheit है. मतलब वेदर जो है उसने डिसाइड कर लिया है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके थोड़ा सा अपलिफ्ट करने का. एंड लास्ट 24 आवर्स में वी हैव सीन अराउंड 27 मिलीमीटर्स ऑफ रेन एंड अगले 24 आवर्स में 8 मिलीमीटर्स की रेन और पॉसिबल है ऐसा फोरकास्ट कहता है. देसी वेदर सर्वाइवल किट आज के लिए है सनग्लासेस कैरी करना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ढेर सारा पानी पीना, अम्ब्रेला कैरी करना इज अ मस्ट टुडे. और अगर बाहर जा रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, एरेंज रन कर रहे हो, दिन भर में वेदर काफी फ्लक्चुएट करेगा तो लेयर के प्लेयर बनकर ही बाहर निकलना. और ऑफकोर्स मिर्चीदार वाइब्स बनाकर रखने के लिए मिर्ची सुनते रहना पड़ेगा. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. फॉलो मी एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम आ चुका है तीन अपडेट्स जानने का। सबसे पहले यूएस मिंट ने 2026 के 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए स्पेशल कॉइन लॉन्च किया है, फीचरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द फ्रंट विद लिबर्टी, इन गॉड वी ट्रस्ट एंड 1776 टू 2026 एंड बैक पे प्रेसिडेंशियल सील। बट हियर इज द फन पार्ट, 25 कॉइन्स का रोल $61 का है, विच मीन्स टेक्निकली $1 कॉइन कॉस्ट $2.44। नंबर टू पर बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को नेशनल टीम के सिग्नेचर्स वाला बैट गिफ्ट किया है ड्यूरिंग द टीम्स विजिट टू क्लेरेंस हाउस। सोशल मीडिया नेचुरली हैड वन क्वेश्चन कि एक्स प्लेयर्स ने भी साइन किया था क्या। मीनवाइल रिपोर्ट से सम प्लेयर्स हु वर रिलीज्ड फ्रॉम द स्क्वाड स्टिल अटेंडेड द मीटिंग व्हाइल वन रिपोर्टेडली रिफ्यूज्ड। एंड लास्टली अ सीरियस वन, इजिप्शियन वेटलिफ्टर नोरा असाम हेलमी कोलैप्स्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ लिफ्ट एट द मेडिटेरेनियन गेम्स इन इटली। इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट थैंकफुली इजिप्शियन ऑफिशियल्स सेड शी इज नाउ इन गुड हेल्थ एंड सफर्ड नो लास्टिंग इश्यूज। एंड दैट्स अ मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला। मुझसे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पर, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Pepe Mirci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो
4: हेलो, ये कमलेश जी?
3: हाँ जी, कौन?
4: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
4: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए,
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to you. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
5: Yes, sir, absolutely.
4: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Yeah, paja.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: किसका है ये तुमको?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
10: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
11: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
10: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
16: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
16: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
17: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
10: Batting तो काफी सारे करते हैं।

0: आठ एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: एंड ये सुनो, ब्रिटिश एंड्योरेंस एथलीट सैम बर्नाउ ने अटेम्प्ट किया है व्हाट कुड बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रिकेट रन अप। द मैन रन फॉर 101.38 किलोमीटर्स, यस, from Lord's Cricket Ground all the way to Valley End Cricket Club. And get this, the overnight run took him around 14 hours. Full cricket whites pehne hue the, cricket ball in hand. Matlab banda run up nahi kar raha tha, pura marathon run kar raha tha. And after all those kilometers, he still had to bowl the opening delivery of the match. Respectfully, मेरे लिए तो यार 101 मीटर्स के बाद ही बॉडी बोल देती है बस कर बेटा, लंग्स की थोड़ी चिंता तो कर ले। अभी वैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज करंटली रिव्यूइंग द एविडेंस बिफोर ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग द अटेम्प्ट। लेकिन ऑनेस्टली यार, देसी क्रिकेट में हम बोलते हैं बेटा बॉलिंग से पहले थोड़ा सा रन अप ले लो। सैम ने कहा थोड़ा, होल्ड माय वाटर बॉटल, मैं पूरे 14 आवर्स के लिए रन अप लेने वाला हूँ। एंड इस तरह की ज्यादा क्रेजी स्टोरीज अगर तुम्हें पसंद है ना तो सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे फॉलो भी कर लो यार इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेज भी ड्रॉप कर दिया करो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: देसी खाना,
10: देसी शॉपिंग,
9: देसी कल्चर
10: और देसी एंटरटेनमेंट,
9: बस एक ही डेस्टिनेशन,
10: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
11: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
16: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
17: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला एंड लेट्स सी हू इज शेयरिंग योर बर्थडे स्पॉटलाइट विद यू टुडे ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले वी गॉट चार्ली शीन, द मैन बिहाइंड टू एंड हाफ मैन, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये शो, लेकिन लास्ट के सीजन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसमें। देन वी हैव काया गर्बर, मॉडल एंड एक्ट्रेस। And then author and journalist Malcolm Gladwell is also celebrating today. He wrote The Tipping Point. And then filmmaker and screenwriter Noah Baumbach is on the birthday list today, along with actor Jack Dylan Grazer, known for the It films. And finally, Olympic gold medalist, freestyler, skier Eileen Gu, because apparently some people celebrate birthdays by winning gold. Happy birthday to you once again. Tumhara birthday na celebrity level ka ho, ye meri dua hai tumhare liye. Ghar par mummy ka classic, beta cake kaatne se pehle photo to banta hai wala moment enjoy karna. Have a great birthday and a great year ahead. And abhi we are looking at Mirchi Dar bangers. Main hoon Priscilla tumhare saath. Apne birthday shoutouts mujhe bhej sakte ho. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. अपनी आवाज में मैसेज भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पर 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And it's time to find out gold का क्या rate चल रहा है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है Mirchi Mornings.
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold update. Gold trading at $4,480. $4,480 per ounce के साथ आज gold के prices $100 upward trend हैं पिछले दो दिन से. जी हाँ, gold ऊपर जा रहा है अबाउट $100 पर ट्राई औंस. जब हम इस लेबर डे वीकेंड पे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं आप सबके साथ लिटिल इंडिया ऑक्टी रोड RajJewels.com पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड डायमंड नेचुरल. आइए 0% इंटरेस्ट पे जीरो डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग अवेल करते हुए 9 मंथ की इंस्टॉलमेंट में आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए बेस्ट डील्स एंड बेस्ट डिजाइनिंग ऑप्शंस के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का अपडेटेड रेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
3: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम टू गेट अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सजेस्टेड कॉलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द ट्रंप स्ट्रेट amid the ongoing conflict involving Iran. The White House responded that the name has a nice ring to it. Now renaming a major waterway is obviously a serious geopolitical matter. Number 2 per, a 5.1 magnitude earthquake hit Tibet according to the US Geological Survey. It struck around 10 kilometers deep just days after a deadly flash flood affected Tibet and Nepal. That's a tough sequence of events, and our thoughts are with everyone affected. And lastly, Belgium's Prime Minister Bart De Wever reportedly brought Indian Prime Minister Narendra Modi a sculpture of the India Gate made entirely out of Belgian chocolate. It's a beautiful gift, except there was one tiny problem. The India Gate melted on the flight. As he joked, chocolate may be excellent for diplomacy, but apparently not so excellent for diplomatic travel. And that's your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main ho प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और एक्स पर ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Gambana. Murga, murga. La vieja la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली, ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं.
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे.
10: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th सितंबर एट योर नियरेस्ट सिनेमा.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Jai Gurudev. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
15: 13 सितंबर रविवार
14: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200. जय गुरुदेव.
16: किसका है ये तू?
17: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं.
18: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर.
19: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी.
18: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट. टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com.
0: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो चेक करते हैं आज तुम्हारे स्टार्स क्या कह रहे हैं ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन,
1: इरीज यानी मेष राशि, माइंडसेट पॉजिटिव है और स्मार्ट सेविंग पर पैसा भी स्मार्टली ग्रो कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का सेविंग्स अमाउंट मत समझ लेना। लकी कलर फॉर यू इज स्टील, लकी नंबर इज 26। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज हार्मनी पे फोकस करें, जो नेगेटिविटी है उसे दिल पर वेट बनाकर ना बैठाएं, उसे थोड़ा सा रिलीज कर दें। पीस इज द न्यू फ्लेक्स। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 41। जेमिनी यानी मिथुन राशि, रिलैक्स, मनी मैटर्स ग्रेजुअली सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। आज यूनिवर्स का मैसेज है भाई, स्प्रेडशीट्स बंद कर दो एंड जस्ट ब्रीद। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 8। कैंसर यानी कर्क राशि, बैड हैबिट्स को बाय बाय बोलने का परफेक्ट टाइम है, और नई अपॉर्चुनिटीज को लेट मी थिंक अबाउट इट बोल के 3 महीने डिले करना नहीं चाहिए। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 53। लियो यानी कि सिंह राशि, आज वर्ड्स केयरफुली चूज करना, सच बोलना अच्छी बात है बट फुल HD ऑनेस्टी कभी कभी फ्रेंड्स की फीलिंग्स को बफरिंग पे डाल देती है। करियर वाइज नेगोशिएशन इज कमिंग योर वे। लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 17। वर्गो यानी कन्या राशि, करियर, स्टडीज और फाइनेंसेस तीनों का अलाइनमेंट आज सॉलिड है बॉस। बिजी स्केड्यूल के बावजूद हेल्थ भी मैनेजेबल रहने वाली है। बेसिकली आज मल्टीटास्किंग तुम्हारा टॉक्सिक ट्रेट नहीं बल्कि सुपर पावर है। लकी कलर इज सफायर ब्लू, लकी नंबर इज 64। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 1। बची हुई 6 राशियों को लेकर आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में इन पार्ट 2 ऑफ राशि जोन। तब तक के लिए तुम मुझे फॉलो करो मिर्ची।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
0: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
14: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हांजी, वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और अब टाइम है बची हुई छह राशियों के बारे में जानने का.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी तुला राशि, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स आज फुल शर्लॉक मोड में है. फाइनेंशियल या पर्सनल हर्डल हो, कैमली एनालाइज करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा. बस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मत बना देना. लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 32. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फेस्टिव या रोमांटिक वाइब्स आर इन द एयर, बट अनएक्सपेक्टेड फैमिली मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं. सो थोड़ा सा फाइनेंशियल कुशन रेडी रखो. रोमांस अच्छा है, इमरजेंसी फंड भी बहुत जरूरी. लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 71. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज वो करो जो सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करे और वर्क लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनाए. डेस्क क्लीन करो, टू डू लिस्ट बनाओ, अपने टास्क पर टिक करते जाओ उन्हें पूरा करने के बाद, या एटलीस्ट वो 470-100 ईमेल्स ही देख लो. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 19. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, सेल्फ इंप्रूवमेंट का एफर्ट डेफिनेटली पे ऑफ करेगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और कॉन्फिडेंस भी लेवल अप होगा. मतलब ग्लो अप सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर से नहीं होगा, रियल लाइफ में होगा बॉस. लकी कलर इज कॉपर कलर, लकी नंबर इज 45. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्रोटेक्ट योर पीस टुडे. फैमिली और होम मैटर्स में सपोर्ट मिलता रहेगा, सो अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएटली देना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस चाय और साइलेंस ही काफी होता है. लकी कलर इज पाउडर ब्लू, लकी नंबर इज 6. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, क्रिएटिव हॉबीज आर योर एस्केप टुडे. म्यूजिक, पेंटिंग, कुकिंग, जो कुछ दिल करे बस रिस्की इन्वेस्टमेंट से डिस्टेंस रखो. आज डबल योर मनी वाले रैंडम डीएम्स को डबल टैप करके ब्लॉक कर देना. ओके, लकी कलर फॉर यू इज प्लम, लकी नंबर इज 88. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे जल्दी से फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर अभी मैसेज भेजो 9033. मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
7: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and saiusainc.com.
8: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
9: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन वीक शॉपिंग मॉल के अंदर।
8: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
6: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
12: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
6: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: और बस शो खत्म होने वाला है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में यह है मिर्ची मॉर्निंग्स। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ सुना कर जाती हूँ। कि एक जापानीज टैक्सी कंपनी ओनर है हु रिपोर्टेडली इज इन ट्रबल आफ्टर अलेजेडली थ्रोइंग चेयर्स एट एम्प्लॉइज। क्यों भाई, क्यों ऐसा किया उन्होंने? बिकॉज दे कुडंट आंसर क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग अ सरप्राइज इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू लोकल रिपोर्ट्स, ओनर यू शांग वान विजिटेड अ ब्रांच, सडनली टेस्टेड द एम्प्लॉइज, और जब आंसर्स नहीं आए apparently patients ने भी resignation दे दिया और chairs started flying। भाई इतना गुस्सा आता क्यों है? Now the company actually provides English lessons to its staff so they can communicate better with foreign tourists। Fair enough यार, दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन भाई मुझे ये बताओ, English improve करना और chair उठाकर फेंकना, इन दोनों के बीच में relation क्या है? भाई company को ना English सिखाने के साथ साथ anger management के classes भी देनी चाहिए, especially managers के लिए। वैसे company management has since apologized for इंसिडेंट, लेकिन इंटरनेट पे जो एक बार आ जाता है वो तो वायरल हो ही जाता है, उसे कैसे हटाओगे? इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखा करें, स्पेशली जब तुम्हें बहुत सारा गुस्सा आता हो। बिकॉज अपने गुस्से को अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो लाइफ में हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। एंड विद दैट वेरी थॉटफुल थॉट, मैं बोले तो प्रिसला तुमसे टाटा बाय बाय करती हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू बी गुड एंड बी सेफ, और मुझसे कनेक्ट भी कर लो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम on Instagram and X, and WhatsApp ka number hai 9033647244, and be happy and mirchi sunte raho, stay tuned and stay hot.
1: Mirchi mornings, yeah. Mirchi mornings with Priscilla, it's hot.

0: भाई इस प्रोडक्शन टीम ने तो पैकअप एंड कट सुनते ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कट कर दी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Well, this is actually what I am feeling. So basically, तुम बार 2 की लोकेशन रखी चल रही थी एट द सेम प्लेस, मतलब जो फर्स्ट फिल्म आई थी वो वाडा नाम के एक जगह पे एक लोकेशन पे तैयार की गई थी, शूट की गई थी। और अभी जब ये टीम फिल्म के दूसरे पार्ट के रेकी के लिए लोकेशन पे पहुंची तो वहां उनको फर्स्ट शूट की कुछ चीजें मिली। अ फ्यू प्रॉप्स लाइक आटे की गुड़िया बनाने वाला मोल्ड एंड द ओरिजिनल लॉक ओपनर जो मूवी में भी दिखाया गया है, विच एक्चुअली मेड मी वंडर कि क्या हम रिस्पॉन्सिबल समारिटन्स हैं। नहीं, आप खुद सोचो, आप एक शूट करते हो, पूरा सेटअप लगाते हो, प्रॉप्स आते हैं और फिर शूट जब खत्म होता है आप कुछ चीजें वहीं उस जगह पे छोड़ के चले जाते हैं। मतलब 2018 से अब तक कहानी चल रही है लेकिन प्रोडक्शन टीम की क्लीन अप स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये बात और है कि प्रोडक्शन टीम ने इस चीज को नॉस्टैल्जिया और वाव वाली फीलिंग के साथ प्रोजेक्ट किया ऑन सोशल मीडिया। बट आई गेस जो चेंज हम पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं ना, उसकी शुरुआत खुद से ही होती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और अगर आपको पता ना हो तो बताना चाहती हूँ, द लोकेशन वाडा वॉज एन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, वो भी 100 सालों तक। यस यू हर्ड इट राइट, तुम्बाड जिस जगह पे बनी है उस जगह पे 100 सालों तक एक इंसान तक नहीं गया था यार। और आप उस जगह पे इस तरीके की गंदगी मचा के आए हैं जो एज इट इज आपको वापस मिली है जब आप तुम्बाड 2 के लोकेशन रखी पे गए हैं। आई एम सॉरी बट एज एन इंडिविजुअल आई थिंक इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आपकी क्या राय है इस बारे में, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fermici. Isca bana, usca bana, saca bana. Rambala. Murga, murga. La viva la murga. Milchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Na, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.

0: Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
1: नो
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: किसका है?
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
9: फ्राइडे 11th सितंबर 8:30 PM, विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव, ETS अरेना, अटलांटिक सिटी।
8: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इन बिल्लियों की कहानी बच्चों के लिए नहीं है।
1: ओटीटी एंड चिल
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति। और अगर आपको लगता है कि भाई बिल्लियां सिर्फ क्यूट होती हैं, उनका काम बस खाना सोना और एटीट्यूड दिखाना होता है, तो आपको ना रिकी जर्वेस की एली कैट्स देखनी चाहिए। ये नेटफ्लिक्स की एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी है जो 7 अगस्त को आई, एंड आई हैपन टू वॉच इट रिसेंटली, विच इज द स्टोरी ऑफ लंदन की गलियों में रहने वाली फेरल कैट्स, जहां सर्वाइवल भी है, दोस्ती भी है और फुल ऑन केओस भी है। एंड यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन कैट्स के थ्रू लाइफ, लोनलीनेस और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स भी बड़े फनी तरीके से सामने आते हैं। तो चलो जल्दी से ना 5 पॉइंट्स देती हूँ जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। सबसे पहले तो रिकी जर्वेस का तड़का, इस सीरीज को उन्होंने सिर्फ क्रिएट नहीं किया, लिखा और डायरेक्ट भी किया है, जिसमें गस नाम के बिल्ले की आवाज इन्होंने ही दी है। इन शॉर्ट, ह्यूमर में उनका सिग्नेचर सार्कैज़म और इररेवरेंस बहुत अमेजिंग लगेगा। पॉइंट नंबर 2, ये क्यूट कैट्स का वर्जन नहीं है। हाँ, नाम सुन के आपको लगेगा कि भाई इनोसेंट बिल्लियां होंगी या फिर बच्चों के लिए सीरीज होगी। नहीं नहीं नहीं, ये एडल्ट एनिमेशन है जिसमें डार्क ह्यूमर, गाली गलौज और काफी अनअपोलोजेटिक कॉमेडी भी है। पॉइंट नंबर 3, हंसी के पीछे सीरियस बातें। हाँ जी, जिंदगी, मौत, अकेलापन, दोस्ती और सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स को ये सीरीज कैट्स की दुनिया के थ्रू सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाती है। पॉइंट नंबर 4, छोटी, क्विक एंड बिंज वर्दी। इस सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड रफली 15 से 17 मिनट का है, मतलब एक बैठक में आप पूरी सीरीज निपटा सकते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, जो इसको देखने की सबसे बड़ी वजह है, अगर आपको कुछ अलग देखना है, अगर आप रेगुलर सिटकॉम्स और प्रेडिक्टेबल कॉमेडी से बोर हो चुके हैं, तो एली कैट्स का डार्क, अब्सर्ड और थोड़ा बिजार ह्यूमर एक रिफ्रेशिंग चेंज जरूर देगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Kabhi Jersey ki street par, kabhi choti choti parties ke beech.
4: Arz kiya hai, chandni raat thi, daud raha tha sone ka ghoda. Tabadak, tabadak.
3: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
5: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
6: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
10: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
11: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
12: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
13: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
14: I am not going to bed with you ever again.
13: But why? What did I do?
14: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
13: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
14: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
13: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
14: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
15: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
20: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: लो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप अपने दिमाग के घोड़ों को किधर किधर दौड़ा रहे हो यार, जरा लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाकर अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोगों को कॉल करने पे वो तो फोन भी नहीं उठाते यार, आई गेस नंबर थोड़ा वियर्ड सा होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये तो बस वो वाला कॉल होगा जिसको इग्नोर करना है। बट एनीवे, आज मैंने कॉल लगाया है नितिन जी को एंड आई गॉट टू नो कि वो हैदराबाद हाल फिलहाल शिफ्ट हुए हैं बैंगलोर से, बट ओरिजिनली ये हमारे यहाँ से आते हैं। बोले तो बिहार पटना का कनेक्शन है भैया। तो नितिन जी, मिर्ची फिल्म ची बनने के लिए तैयार हैं आप?
3: यस श्योर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म जिसमें 8 साल के बच्चे को डिसलेक्सिया होता है,
3: तारे जमीन पर।
0: हाँ जी, तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी के फेवरेट टीचर कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो लड़की को खंडाला बुलाते हैं,
3: गुलाम।
0: यस, गुलाम में हीरोइन कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें वो चोर बनती हैं,
3: बंटी एंड बबली।
0: हाँ जी, बंटी और बबली में पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: पुलिस ऑफिसर अमिताभ बच्चन।
0: यस, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो सड़ू प्रिंसिपल बने हैं,
3: मोहब्बतें।
0: मोहब्बतें में किस हीरो को एक विधवा से प्यार हो जाता है?
3: जिमी शेरगिल।
0: हाँ जी, जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी, सही जा रहे हैं आप। बस काश कि मैं गाना गेस करने पे आपको ये नंबर दे देती, बट कोई नहीं, आपने इस गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है, इसलिए आप बने हैं हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो रेडियो के उस पार जो भी सुन रहा है फिलहाल, अगर आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
5: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
4: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
6: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
7: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
16: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
15: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi.
0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति, श्रुति। श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: किसी के दिल से नहीं, बट मैं मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने शुरू किया था नितिन जी से बड़ी गॉड स्टार करे पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ है गीतांजलि। तो क्या तैयार है मैम?
20: जी बिल्कुल।
0: ओके, तो वो जहाँ जिस क्वेश्चन पे अटके थे, वो सवाल था जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी,
20: वो तनुवेड्स मनु।
0: क्या बात है, तनुवेड्स मनु में तनु से लव एट फर्स्ट साइट किसको होता है?
20: ये आर माधवन को।
0: जी, आर माधवन की फिल्म जिसमें वो हौसला, ईंधन और बदला सिखाते हैं।
20: धुरंधर द रिवेंज।
0: धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल कौन है?
20: अर्जुन रामपाल।
0: यस, अर्जुन रामपाल की फिल्म जिसमें वो शांति प्रिया को झूमर के नीचे मारते हैं।
20: ओम शांति ओम।
0: क्या बात, ओम शांति ओम में ओम के दोस्त कौन है?
20: श्रेयस तलपड़े।
0: वाह वाह, श्रेयस तलपड़े की फिल्म जिसमें वो स्टैमर करते हैं।
20: गोलमाल थ्री
0: में माधव कौन है?
20: अर्शद वारसी।
0: यस, अर्शद वारसी किस फिल्म में बड़ा वाला W ढूंढते हैं?
20: बड़ा वाला W शायद उसमें धमाल में।
0: हाँ जी बिल्कुल सही, शायद नहीं बिल्कुल सही, धमाल में करप्ट पुलिस ऑफिसर कौन है?
20: संजय दत्त।
0: यस, संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो अपनी माँ को 50 तोले की गोल्ड चेन फ्लॉन्ट करते हैं।
20: वास्तव।
0: क्या बात है, और आप भी वास्तव में फिल्मची हैं एकदम बड़ी वाली।
20: इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था।
0: बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के।
20: थैंक यू सो मच मैम।
0: ऑनेस्टली थैंक्स, तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि आप फुर्सत निकाल के मेरे डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज देते हो यार। तो चलिए इसी बात पे डिक्लेयर करते हैं गीतांजलि जी को आज के हमारे शो की दूसरी
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी थोड़ा फोमो में है, देन वरी नॉट, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए एंड आई विल कॉल यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इन फिल्मों में हीरोइंस को बचाया नहीं जाता, दे फाइट बैक एंड राइट देयर ओन स्टोरी।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना गिने चुनी ही ऐसी फिल्में हैं, और इसलिए मैंने सोचा आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात करूं जहां वुमेन एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड फॉट बैक। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट सिस्टर मिडनाइट, नंबर दो पे NH10, नंबर तीन पे मॉम, नंबर चार पे बुलबुल एंड नंबर पांच पे नो वन किल्ड जेसिका। तो शुरू करते हैं करण खंडारी डायरेक्टोरियल सिस्टर मिडनाइट से, जो 2024 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग राधिका आप्टे एज उमा, जो एक अनकन्वेंशनल वुमन है हु रिफ्यूजेस टू फिट इनटू द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। देखो, हमें भी पता है कि शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर जरूरी नहीं कि हैप्पी ही हो, एंड सिस्टर मिडनाइट में राधिका आप्टे की उमा एक अरेंज्ड मैरिज में फंस जाती है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सबमिसिव वाइफ बनने को रेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी और क्वर्की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये फिल्म एक वुमन के रिबेलियन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रीडम की सर्च को एक्सप्लोर करती है। ऑल्दो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को इस मूवी की स्टोरी टेलिंग समझ में ही नहीं आ पाए, बट लेट मी टेल यू, इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 2024 के कैंस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की मूवी है ये। तो अगर आप एक मर्द हैं और अपने अंदर के फेमिनिज्म को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, देन डू वॉच द मूवी। बाकी की चार फिल्मों की डिस्कशन सबसे कुछ ही देर में होगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑन।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. Na fiind bala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Ye, Jadeep.
2: हाँ जी,
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी,
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे।
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
3: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में, बैंक

0: Beat ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
7: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
6: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
8: किसका है ये तू?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलेडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं.
10: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर.
11: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी.
10: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey.

0: From a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारी हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम एट नाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बन के रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
3: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
9: ओह नो,
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
12: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
13: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
14: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
18: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
17: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
19: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
4: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
5: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call
12: 908-671-1344.
13: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
14: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
12: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
14: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
15: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: भाई मैं तो नींद में भी इस इंसान की मूवीज देख सकती हूँ।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ये बात और है कि जिस मूवी की बात अभी करने वाली हूँ वो थिएटर में आई थी एंड आई मिस्ड इट यार, बट आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली इट इज कमिंग ऑन द ओटीटी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अनुराग कश्यप डायरेक्टोरियल फिल्म बंदर के बारे में, विच स्टार्स बॉबी देओल एज द लीड। वेल उनके अलावा मूवी में सानिया मल्होत्रा, सपना पाब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राजबी शेट्टी और जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स भी हैं। माइंड यू ये फिल्म जो है वो सबसे पहले 2025 में रिलीज हुई थी। हाँ जी, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में ग्लोबली इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था। फिर किसी ना किसी रीजन से इंडिया में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली इट रिलीज्ड इन द थिएटर्स ऑन द 5th of June 2026, विच आई डेफिनेटली मिस्ड। बट अब फाइनली अनुराग कश्यप की ये फिल्म जो है वो Z5 पे आ रही है ऑन द 28th of August। तो अगर आपको भी अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग पसंद है और आप लॉर्ड बॉबी के भी फैन हैं, इनफैक्ट उनके अलावा जितने सितारों के नाम मैंने बोले अगर उनका भी काम आपको पसंद आता है, देन डेफिनेटली आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। बाकी जब मैं ये फिल्म देखूंगी ना उसके बाद आपको जरूर बताऊंगी कि कैसी लगी। फिलहाल के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: ये कमलेश जी।
3: हाँ जी कौन?
4: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
4: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे, हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए होते तो करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें, बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे, कोई त्योहार नहीं है कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: yes,
5: with us?
3: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
5: Yes, sir, absolutely.
4: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
1: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Food?
9: Yes.
8: Shopping?
9: Yes.
8: Entertainment?
9: Double yes.
8: Aur health fair?
9: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
6: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
10: Wow! Yahi toh hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal.

0: है, मगर शेयर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
3: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
3: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
4: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th सितंबर एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
5: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: गप्पा वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
12: अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
15: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: किसका है ये तो?
10: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
11: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
12: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
11: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
18: ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है। ये माना मेरी जान,

बैगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जयदीप।
0: हाँ जी,
1: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
0: हाँ जी,
1: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार

0: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
1: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
0: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
1: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
0: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
1: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
0: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
1: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ ले जाओ, बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
0: तो कहाँ पे है तू?
1: बैंक में, बैंक में।
0: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
1: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
0: है?
1: अपने हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने।
0: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
1: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
0: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू तू तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
1: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
11: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
6: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
4: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
6: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
7: एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September एट योर नियरेस्ट सिनेमा।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
12: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
13: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
14: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
15: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: Desi khana,
10: desi shopping,
9: desi culture,
10: aur desi entertainment.
9: Bas ek hi destination.
10: Indo-American Community Fair, September 12th or 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दास जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: नहीं हो पाया
1: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो
2: एक का... क्या समझ रहे हो भाई?
1: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
1: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया
1: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
1: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: गुस्से ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
2: उसमें
1: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और

0: मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
1: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
1: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू कु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: छुरा क्यों घोंपे?
9: मत मारे कालीन भैया,
8: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
10: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
11: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
12: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
8: किसका है ये तो?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
10: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
11: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
10: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दाने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जींस पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
8: 13 सितंबर रविवार
7: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
11: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स हिजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव एटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।

थर्सडे आ गया है दोस्तों, और इसका मतलब है वीक ऑफिशियली ऑन ट्रैक है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन परफेक्ट है थिंग्स इन मोशन के लिए। प्लेलिस्ट लाउडर होने वाली है, मैसेजेस थोड़े फास्टर आने वाले हैं, और प्लान्स का टोन सडनली अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि यार थर्सडे वो स्वीट स्पॉट है जहाँ प्रेशर कम लगता है और एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे का ट्रेलर, वीकेंड का स्नीक पीक। तो यार ऑफिस हो या होम, आज एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है और हम भी उसी फ्लो में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि शाम शानदार का थर्सडे एडिशन फुल ऑन पेस पे चलने वाला है। तो आप भी मुझे बताइए कि आप आज किसके लिए रेडी हो, म्यूजिक, मस्ती या दोनों। डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI विद योर थर्सडे मूड सॉन्ग। और तब तक के लिए मेरी थर्सडे मूड का ये रहा अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: नहीं वो
2: मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Food?
6: Yes.
5: Shopping?
6: Yes.
5: Entertainment?
6: Double yes.
5: Or health fair?
6: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
17: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके हैं इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही

इसी गाने में नजर आए थे, और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था, तो काफ़ी हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए, वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी, वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे, बंटी और बबली के एल्बम से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज़ में। और वैसे तो कजरारे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ दैट टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरारे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है, तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow to Jano.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.
16: Look at

अगर फलों में किसी को अवार्ड देना हो ना तो इस एक फ्रूट को जरूर मिलना चाहिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए ना, जहाँ इतने सारे फल हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, वह हर इंसान का दोस्त अगर कोई एक फ्रूट है तो वो है बनाना। अब जाहिर सी बात है, बनाना हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, कुछ नखरे नहीं, जैसे कि ना काटना पड़ता है ऑरेंज की तरह, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनार की तरह, बस उठा लो, पील करो और खा लो। और अगर ऐसे सीधा साधा नहीं पसंद तो स्मूदी बना लो, डेजर्ट बना लो, या मेरे फेवरेट डीप लॉन्ग बनाना चिप्स फॉर्म में खा लो। और एक नहीं, उसमें भी तीन तीन वैरायटी, प्लेन चिप्स, ब्लैक पेपर चिप्स एंड रेड चिली चिप्स। तो हर फॉर्म में आपको मिलेगा 100% नेचुरल क्रिस्पी बनाना चिप। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने नज़दीकी इंडियन स्टोर से ले आइए हेल्दी एंड क्रिस्पी दीप बनाना चिप्स, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बनाना का ये अंदाज पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskuraakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow to Jano.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.
15: Sham Sardar, let's do not donkey, have a funky time.
16: वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था, तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग, जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है, नहीं, क्योंकि छोटे शहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटे छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था, वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है, तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है इवन आफ्टर 20 ईयर्स, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में। और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के यार सारे गाने अमेजिंग है। मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो कपड़े
2: गायब? नहीं,
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे कपड़े
3: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
13: 13 सितंबर रविवार
12: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
14: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam Live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
18: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
17: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
19: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद 0 ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
19: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्तों, हर दिन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जरूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम जरूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
20: जय सायराम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। फाइनली सीम्स लाइक वी गोना सी रेन फ्री डेज एंड टुडे द मार्केट्स एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू बाय अ होम, टुडेज मार्केट इज अ गुड रिमाइंडर दैट टाइमिंग द मार्केट इज मच हार्डर देन प्रिपेयरिंग फॉर इट। Mortgage rates continue to move within a relatively narrow range, with day-to-day changes driven by economic data, inflation expectation, and investor sentiment. While mortgage rates remain higher than the historic lows we saw a few years ago, buyers are adapting and many are discovering that waiting for lower rates may mean facing higher home prices or increased competition. So friends, buying your dream home, pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. is lionmtg.com. Well friends, you name it and Lion Mortgage has all the mortgage products. But the two products that are very, very popular nowadays is buying your investment property under an LLC, where we don't require any financial documents. Second, we are closing second loans. If you have equity on your house, we are closing second loans in 48 hours. So for all your mortgage needs, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
21: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: क्रिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
5: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
6: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
7: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
6: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
13: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: RK Jewels से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट RK Jewels इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.
20: Are you ke bada kori bhai? Baja.

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्जेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
0: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज़ जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज़ जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए इस शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ, और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टेड आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज़ जैसे उस सनसेट के ब्यूटिफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है? टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nici. Escabana, buscabana, sacabana. Ea bana. Burga, burga. La viva la burga. Nici, burga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
9: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट, फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड. Deep Cow, the Jano.
10: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं.
11: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
12: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
12: नहीं खुला तो तोड़ देंगे.
13: XL Entertainment presents Mirzapur the Movie. Releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
15: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
20: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
21: शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। दोस्तों देखिए, आज है September 3rd और वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि यार सही वक्त पे सही काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होता है। ये तो वैसे बड़े बुजुर्ग कह के गए, लेकिन हर हफ्ते हर दिन हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में हमारे जो बॉबी जी है, जो कि हमारे गोल्ड एक्सपर्ट है फ्रॉम राज ज्वेल्स, वो भी ये कहते रहते हैं कि सही एंट्री पॉइंट जब है तब गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में वो कहते हैं ना इसमें तेरा घाटा। तो चलिए आज बॉबी जी को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि यार जिन्होंने वो थोड़ी बहुत ट्रेन मिस कर दी है, जब वो कह रहे थे ऑलमोस्ट वीक के शुरुआत में कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, तो आज का गोल्ड रेट क्या है। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका।
22: नमस्कार दोस्तों, आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। देखिए मैं तो ड्यूटी है अपनी आपके साथ रोज शाम को प्राइस अपडेट करना है, अवेयर कराना है, एंट्री पॉइंट में कहीं ना कहीं लोगों को अवगत कराना है कि गोल्ड में फ्लक्चुएशन बहुत हैवी है। जैसे लास्ट वीक की अभी 3 दिन पहले की बात करें तो गोल्ड है ड्रॉप टू 4,335 डॉलर के करीब गिरा था और इस समय 4,480 डॉलर। सो आप ये समझिए अबाउट 150 डॉलर पर ट्राई औंस दो या तीन दिन के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। सो 150 डॉलर पर ट्राई औंस सिद्धि जी सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन एक औंस बिस्कुट के ऊपर अगर आपको 150 डॉलर पर ट्राई औंस की फ्लक्चुएशन है, अगर ज्वेलरी की बात की जाए 22 कैरेट की तो अबाउट 5 से 6 डॉलर ग्राम, अगर आप 100 ग्राम का नेकलेस सेट लेते हैं तो अबाउट 600 डॉलर का डिफरेंस आपका आता है। और रेडियो मिर्ची के साथ राज ज्वेल्स का यही एक उद्देश्य रहता है कि हम आपको अवगत कराएं ताकि आप अपने डॉलर्स में ज्यादा से ज्यादा सोना घर लेके जाएं, चाहे उसको 0% इंटरेस्ट पे 0% डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए फाइनेंसिंग कराने, ताकि गोल्ड का प्राइस जब बढ़ जाए, जिन्होंने पिछले हफ्ते हमसे गोल्ड खरीदा होता और आज जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था उनको डिफरेंस का बेनिफिट उनके साथ रहता, उनके पास ज्यादा सोना जाता कम डॉलर्स में। और हम आपको अभी भी वेलकम करते हैं क्योंकि गोल्ड 5,600 डॉलर्स की पीक एक बार टच कर चुका है। किसी दिन ऐसा ना हो सिद्धि जी पलक झपकते ही गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले ले और हम फिर अपने हाथ मलते रह जाएं कि यार काश हमने गोल्ड ले लिया होता। सो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली सिद्धि जी इन्वेस्ट करें, ताकि जब पुष्य नक्षत्र धनतेरस और दिवाली की सेलिब्रेशन हो तब ये ना भूलना पड़े कि काश मैंने अपने बुजुर्गों की बात सुन ली थी, सुन ली होती जैसा आपने कहा था।
21: बिल्कुल। सो दोस्तों याद रखिए, आज विजिट कीजिए rajjewels.com क्योंकि त्योहारों का सीजन तो शुरू हो चुका है, जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन जस्ट अभी अभी हो चुका है और कुछ ऐसे भाई भी होंगे जो थोड़े बहुत लेट लड़ती जरूर होंगे, तो इससे पहले कि और भी ज्यादा गोल्ड के रेट्स बढ़ जाए आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Inefficient.
5: Very complex.
6: Clumsy or
7: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी।
14: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and Sai USA Inc.

0: mintmakeup.com।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफ़र जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
11: किसका है ये
12: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
14: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
13: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and saiusainc.com.
15: RK Jewels से खरीदिए diamond jewelry India वाले price में और pay कीजिए easy monthly installments में. Only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बन के तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाटार जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शांता लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड ख़त्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बच जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैंपियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टेड आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीकेंड में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
9: 13 सप्टेम्बर रविवार
8: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Kiska hai ye tu?
14: Ek awaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
15: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
16: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
15: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
17: Listener MI, back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
13: हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव्स या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
1: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग।

0: Asian Resource Center की ओपनिंग।
1: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 Edison Wick Shopping Mall के अंदर।
0: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

की टाइम। दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
6: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
7: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
7: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
8: XL Entertainment presents Mirzapur the Movie. Releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
9: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
10: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
12: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwani.
12: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
16: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।